वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। खुशां दे जकारे जावे, निहाल जावे, सत श्री अकाल।

त्वप्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अंशिज तेज उदार अनभिज रूप दुरंत

जिह नियत निगम का हंत मुख चार भगत बेअंत अनभिज अतुल प्रताप अनखंड अमित थाप। जिह कीन जगत प्रसार रचियो विचार विचार अनंत रूप अखंड अतुल प्रताप प्रचंड। जिह अंड ते ब्रह्मंड कीने सो चौदह खंड सब कीन जगत प्रसार अभ्यक्त रूप उदार। जय कोट इंद्र रिपार कई ब्रह्म बिसन विचार कई राम कृष्ण रसूल बिन भगत को न कबूल। कई सिंध पिंध नगेंद्र कई

गिरे हरि गुफे हरि छते हरि नभे हरि इहां हरि उहां हरि जमी हरि जमा हरि अलेख हरि अभेख हरि अदुख हरि अद्वैख हरि अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सो तेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपाद हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभरम हरि अकरम हरि अजय हरि अभय हरि अभेद हरि अछेद हरि अखंड हरि अभंड हरि अदंड हरि प्रचंड हरि

भूत बन चार छित छौना सब दूता धारी पौन के आहारि सो भुजंग जानियत है। तृण के बछैया धन लोभ के तजैयत तो गौन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया ताहे पंछी की बडैया देत बगुला बिडाल ब्रिक ध्यानी ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तिन्नो जानी पै पखानी नाहे असन प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी के जैया कहे नभ के उड़ैया सो चिरैया कह बखानी है। फल के बछैया ताहे बांदरी के जैया कहे आदि से फिरैया ते तबूत के पछानी है। जल के तरैया को गंगी ऋषि कहत जग आग के भछैया सो चकोर सम मानिए। सूरज सिवैया ताहे कौल की बडाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कछ मछ तेंदुआ कहत सब कौल नाभ कौल जेह ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब देन जारी रिखी के सनाम के महंत लहियत है। माधव भवर ओ अटेर को कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है। मूढ़ रूढ़ पीड़त न गूढ़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके रखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल वैरी सार सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है। जोगी जट्टाधारी सती सचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पैसहत है। न्योली करम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पायन ठंड न बहत है। मानव फनिंद देव दानव न पावे वेद वेद योगतेब नेत नेत कह कहत है। नाचत फिरत मोर बादर करत घोर दामनी अनेक भाव करियो करत है। चंद्रमा शीतल न सूर से तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्म से न वेदचारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा अर विषण कित वेद यो पुराण कित सिमृत समूहन के होए होए बिताए है। मोन दी मदार कित असुनी कुमार कित अंसा अवतार कित काल बस भय है। पीर यो पिकम्बर कित गाने न परत इत भूम ही ते होए के फिर भूम ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोस लो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीप औदलीप कैसे छत्रधारी बड़े अभिमान भुज दंड को करत है। दारा से दिली सर दुर्जोधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तोप जी कबट बेस पोसती अनेक दानी वावत है। शीस कहो कहा भयो मल जो पे काटत अनेक डंड सो तो ना डंडौत अस डांग अथ तीस कहो कहा भयो रोगी जो पे डार रहे उर्द मुख मन तेना मुंड ने हरायो आदिश कहो कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश कहो। शीस पटकत जाके कान में खजूरा दसे मुंड छटकत मित्र पुत्र हूं के शोक सौ आंख को चरैया फल फूल को पछैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न भूक सौ कहाँ भयो भेड़ जो कसत शीस वृक्ष न सो माटी को पछैया बोल पूछ लीजे जो कसौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ नाचुई करत मोर दादर करत शोर।

ताप के सहित जो पिपाइये अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए ते जो पिपायत अजाप देव पूजना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़े ते जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल वो करत है। आग में जरत गत राण की परत कर पताल के बास क्यों भुजंग न तरत है। को भयो मंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान बो हिंदू तुरक को रावजी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान बो। करता करीम सोई रस करही मोई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान बो। एक ही किसे व सब ही को गुण देव एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो। देहुरा मसीद सोई पूजाओ निवाज ओई मानस भय एक पय अनेक को भ्रमाव है। देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है। एक नैन एक

कनु ककोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर दे अनेक दूर पूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हो, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केत कछ मछ केते उनको करत भच, केते अच वच हो सपच उड़ जाएंगे। केत नभ बीच अच पच को करेंगे भज, केत कुप्रत अच हो पचाए।

तेज जिवा तेज मै अतेज जैसे तेज लीन ताहि तयो भज सब ताहि मैं समाहिंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग वासी कित मदीना मकानी वासी कित उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को भरत है। गैन में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे चुआचार पूजा हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मडी मटली बहारे भीतन लगाए हारे जापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित।

न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न सत्रं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न वामंगलेखं वेखं यौनि स्वरूपं सदा सिद्धता बुद्धता वृद्धरूपं न ही जान जाई कछु रूप रेखं कहां वासता को फिर कौन भेखं कहां नामता को कहा कह कहा वह कहा कह बखानो कह मैं ना वह न रोगं न शोकं न मोहं न मातं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं अद्वेखं अवेखं जूनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेयं परापरं प्रज्ञा प्रकाशी अछेदं गच्छयाद अद्वय अविनाशी न जातं न बातं न रूपं न रंगे नमो आद भंगे न

रूपे अखंड प्रतावाद अक्ष विभूते न जन्म न वर्णंग न वर्णंग न व्यादे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहं न गेहं स नेहं सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न वाते न सत्र न वित्र स भूते भविखे भवान य चित्रे नारायण न रंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभंग भूतंग वेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं स देवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जो नियच्छयाद अद्वय जोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं वै निर्विखादं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंड

पंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न केहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदेवंग सदा सिद्ध बिरदंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तंग प्रभात अनुक्तंग प्रतापे अयुक्तंग अक्षयाद अविक्त यथा वै विभुक्तंग अक्षयाद अक्षय स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहंग न गेहंग शोकंग न साकंग परेयंग पवित्रंग पुनीतंग ताकंग न जातंग न पातंग न मित्रंग न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मंग न भर्मंग न शर्मंग न साके न बर्मंग न चर्मंग न कर्मंग न वाक्य न सत्रंग न मित्रंग न पुत्रंग स्वरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे कहूं गंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के भेष के धर्म धामे कहूं

विद्या कहूँ गान गीत कहूँ मले जबा ख्या कहूँ बेदरी तंग कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नाग बानी कहूँ गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रवाह हो कहूँ छैल छाला धरे छत्र धारी कहूँ राज

तेज अन्नकूट भंडार दाता दुरंत सर्वं प्रकार अनभूत तेज अंश जिगात करता सदैव हरता सनाता आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योतबान जय जात पात नहीं सत्र मित्र जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाप नहीं बर्क ब्याद जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेव जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत घाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई उर्द बाह देसन भ्रमंत कई उर्द मध्य पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र तुचरंत वेद कई कोक काव कथत कतेब कई अगन होत्र कई पवन हार कई कर्त कोट मृत को आहार कई कर्त साक पै पत्र भच्छ नहीं तदब देव होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अग्न होत्र कहूँ।

कई तीर्थ तीर्थ भरमत सुभरम कई अग्नहोत्र कई देव करम कई कर्त वीर विद्या विचार नहीं तदपता सपायतन पार कहूँ राजरीत कहूँ जोग धर्म कही सिमृत शास्त्र उचरत सुकरम न्योली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार कही भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अग्न ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तो दबतास पायतन अंत कई करत कूट विद्या विचार नहीं तो दब देश देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित लीन फोकटो सर्व धर्मा विहीन प्रसाद तोटक छंद जय जम पह जुगण जु जुअंग भय कम पह मेर पयाल भुवंग तपताप सर्व जलेर तलंगन उचर देन्द्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप।

दीन जमीन जमा जय रचयं सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भोग भयं जे खेद न भेद न छेद छयं जय जात न पात न मात पितं जे रचयं छत्री छत्रसितं जय राग न रेख न रोग भणं जय द्वैख न दाख न दोख गणं जय अंडह ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव बद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नगंग से जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव वेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड से तज उद भुजंग की ये देव देव सराध पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभु जात न पात न ज्योत चुतंग जे तात न मात न भ्रास तुतंग जे रोग न शोक न भोग भुवंग जय जंप है किन्नर जच जुवंग नर नार न पुंसक जाहि किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाज रथाधिक पांत गणंग भवभूत भवेख भवान तुवंग जय अंडज सेतज जेर रजंग रज भूमा कास पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भूमेर आकाश निवासितंग रज रोजे

मतंगन गाद ब्याद नाद गतंगन खेदा भेद छेदन रंगे चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जेह राग न रंग न रेख रुगंग जे शोक न भोग न जोग जुगंग वो भंजन गंजन आदि शरंग जे वंदत देवा देव न रंग गण किन्नर जाछ भुजंगर चे मण माणक मोती लाल सुचे अनबंज प्रभा अनगंज प्रतंग जे पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप।

न शीत है न सोच है न ग्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र के विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैख है न भेख है न द्वी है न द्रोह है न काल है न बाल है सदैव दयाल रूप है अगंज है अभंज है अभरम है अभूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत भेक है बलिय रूप राग रंग है न द्वैख है न भेख है न काम क्रोध कर्म है।

गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा सिदस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्त भी विशेखिये बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ बेखिये अगाध आद देव की अनाद बात मानिए नजात पात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानिए सदीव सर्वलोक।

जस किन्नर मच्छ मानस मुर्ग उर्गा पार नेत नेत पुकार ही शिव सक्रो मुख चार सर्व सबद पतार के तर जाप ही जह जाप आद देवा गाद तेजा नाद मूर्त अताप जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहियो विराज दे राज राज प्रवीन जच गंधर्व देवता नो न ब्रह्म क्षत्रिय न माहे वैष्णंके विके विराज सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म शेख स्वरूप रात दिवस न मध्य उर्द न भूम आकाश अनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जात्रण देव पूजा गोर के न अधीन सर्व सबद बतार के दर जानिए जह जोत शेष नाम स हंस वर्ण नेत पूरण होत सोत सोत हटे सब दुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गर्भ पड़त पड़त थके महागव कड़त गाड़ अनंत हार हार कहियो सबो मिल नाम नाम तुरंत वेद भेद न पायो।

रूप रेख न रंग जा को राग रूप न रंग सर्व लायक सर्व गायक सर्व ते अनभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंध दयाल स्वामी याद देवापाल दीन बंध प्रवीण श्रीपद सर्व को करतार वरन चिहन न चक्र जा को चक्र चिहन कार जात पात न गोत्र गाथा रूप रेख न बरन सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भूव को भरन दुष्ट गंजन शत्रु मंजन परम पुरक प्रमाथ दुष्ट हर्ता श्रेष्ठ कर्ता

भूमका जले थले महमानीय जेहना अम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद मित्र बालक शत्रु कालक दीन दयाल मुकंद अघाव डंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुगतम सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व सहसन सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विश्व भर्ता आद रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आद देवा खंड भूमका जले तले मह जपत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आद देवा पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार।

कोटेंद्र उपेंद्र व्यास नक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुंचकृत वे मुखचार आदंत न मथ जाको भूत भव भवान सत द्वापर तृतीया कल युग चतुर काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हर हर थके सब नहीं पाइये तह पार नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कूट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोद सोद थके महासुर।

को आत्मा स्वरूप है कहाँ सृष्ट को विचार, कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा, कह जी तब कह मरण है कवन सुरक कह नरक, को सुखड़ा को मूढ़ता कहाँ तरक अव तरक दोहरा, को निंदा जस है कवन

आश्री विहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप ते चंडासुर चंडन मुंड विहंडन धूम्र विदुन सनमहक मथे दान प्रहारण नरक निवारण नदम उदारण उर्धे जय जय उसी महासुर मर्दन रम्मक बर्दन आद वृते डावरू डवंके बरबवंके भुजा फरंगे तेज वरंग लंकुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायुध चमके भूखंड दंगे अथद झमके फुंक फनंग जय जय होशी महासुर मर्दन रम्मक बर्दन दैत जिणंग चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगण दजा फरंगण पणि पुंगारण जोध जिते सरधार विवरखण दुष्ट प्रकार खण पुष्ट प्रहर खण दुष्ट मथे जय जय होशी महासुर मर्दन भूमा कासल उर्धे दामनी प्रहासन सुषभ निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़गते रक्तासुर आचन युद्ध ब्रह्माचन हृदय नराचन धरम प्रते श्रोणंत अचिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय होशी महासुर मर्दन पाप विनाशन धरम करे अघ ओघ निवारण दुष्ट प्रचारण श्रेष्ठ उपारण शुद्ध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते सहती सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय होशी महासुर मर्दन भूमा काश पताल जलंग चाचर चमकारण चिच्छुर हारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाड़

प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्ना हे अगमथा हे एक वृते जय जय हो सी का सुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन

संकट निवारण धम उदाहरण तेज प्रकर खंड तुंद तपे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती याद अनाद अगाध छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय उसी शास्त्र प्रकर खण आध अनिल अगाध अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठा।

सुरमर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोष रोदन क्रूर प्रत्ये धूमराज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विदुंसन शुद्ध मते जाल पा जयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रताहन गाढ़ मते जय जय हो सी मैखा सुरमर्दन आद जुगाद अगाद गति खत्रियान खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाध गते ब्रिडलाज बिहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रतिपारण पति दो

दान वी प्रकार कण सर्वर वर्कण दुष्ट प्रकार कण बितल तले अष्टायत वाहन बोल निवाहन संत बनाहन गुड़ कते जय जय उसी में घासुर मर्दन आद अनाथ अगाध प्रति दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रदर्शन शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष्ट प्रदा है अर्ध लगा है दुख हरे अतुल प्रवाने संत जमाने गंजन गुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने याद अंते जय जय उसी मैं खासुर मर्दन साध प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहिली ज्योत जतीली तुंद मते अष्टायत चमकण शस्त्र झमकण दामिन दमकण आद प्रते डुग डुकी दमंके बाघ बबंके भुजा फरंके शुद्ध गति जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण

तुम कहो देव सर्वं विचार जिम कियो आप करते बसार जद बबूदन भय अनंत तव कहो जथामत त्रैंड तंत करता करी मकादर कृपाल अदवय अभूत अन भय दयाल दाता दुरंत दुख दोख रहत जेह नेत नेत सब वेद कहत कई उच नीच क्यों नो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाय मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सिवंत कई पलट सूरत सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वय कह लखाए अंशिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्वय ना सब रोग शोक ते रहत रूप अनभय काल अच्छय स्वरूप करुणा निदान कामल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छय स्वरूप अवचल पार जानी न जाए जय रूप रेख कहे बास तास कहे कौन फेक कहे नाम तास है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चिन्ह नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की कर्तपाल उर्धंग बिरह सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल युद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिजदाग जल थल मही बंधन दुरंत जय नेत नेत निश दिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दुख दहता उदार कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत निश दिन उचरंत त्व प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करे अनित संतु बार गनी मन गारे पच पशु नक नाग नरा देव सर्व समय सब को प्रतपार पोखत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानित दुखन देखत है पर देत न हारे दाहत है दुख दोखन कौदल दुजन के पल मै दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारन पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारे पार न पाए सके बद माबद वेद कते वेदोचारे रोज ही राज बिलोकत राज करो कुरहान की रोज नटारे कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अहमेव न भेव लख्यो भ्रम स्यो भरमाए वेद पुराण कतेब कुरान हसेब थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पत स्यो किन श्री पदमापत पाए आद अनंत अगाध द्वेक सो भूत भविख भवान अभय है अंत विहीना नातम आबादागा दोखा छिद्र अच्छय है लोगन के करता हरता जल मै थल मै भरता प्रवह है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापद ए है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सुबोधन नेह विरक्त अगेह अच्छय है जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरे सुत सुंदर श्री पद्मावत ल है रोगंते और सोगंते जल जोगंते वो भांत बचावे शत्रु अनेक जलावत खाव तऊ तन एक न लांघन पावे राखत है अपनो कर दे कर पाप संभोहन भेटन पावे और की बात कहा कहे तो सौ सौ पेट ही के बट बीच बचावे जय छुजंग सोदान देव भेव तुम सब ही कर द्यावे भूमा का अस्पताल रसादल जय छुजंग सब श्रेण्यावे पाए सके नहीं बार प्रभा हूं को नेत ही नेत भेद बतावे खोज तके सब ही खुजिया सुरहार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हूँ मिल गायो वेद कते वन भेद लखे सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सके नहीं पार उमावत सिद्ध सनात सनातन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन मै जय को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेव कुरान अभेद नृपान सब बजहारे भेद न पाए सके उन भेद को खेद है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग त्यौहारे याद नाद अगाद बेगद वैख जप्यो तिन ही कुल तारे तीरथ कोट की ये स्नान दिए बोधान महाप्रत धारे देश फिर कर वेश तबोधन के सरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बोन्यास करे मुकारे दीन दयाला काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महासत्रन के साल है दान के दिवैया महामान के बढ़िया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जितैया विरुद्ध के मटैया महाबुद्ध

फटक सी कैलाज कमाऊ गढ़ कांसी पुर सी ससी सुरंगाबाद नी के सोहियत है। मासी हिमालय हर हर सी हलब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देख मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्र गिर चांदनी सी चंदगढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंग धार बकान सी बिलंदाबाद कीरत तिहार क्यों जी हरी सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासी सके दुरंगी मकरान के वृदंगी तेरे गीत गायत है। बकरी गंधारी गोर कखरी कर दे जारी पौन के आहारी तेरों नाम ध्यायत है। पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर मैं विराज जहां जहां जाइयत है। पूर्ण प्रताप जंत्र मंत्र

तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडा ना नीको ठाकुर देसा तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुण आरे गुण नहीं कोई तुम दान देहो मेहरबाना तुम करहो भला।

0: बाहे गए की लाज अस गोविंदा सुहार दोहरा राज करेगा खालसा आगी रह न कोई पार हुए सब मिलेंगे बचे सरंग होए दोहरा उड़गी सवाल देश की कर पूरा पासार लंका बाजे फतेगा नेक लंक अवतार चतर चकर भरती चतर चकर भुगते सुयां बहु सुभंग सरदास सरजुते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते
1: देख देखो वेद में आप तज नान गुरु गोविंद सिंह जी काल की सहाय दरबार में त्रिदरबारा

0: फतेह। गुरु पंथ खालसे दी दिना दिन चढ़दी कला रखनी सच्चे पातशाह जी महाराज।
1: Mm-hmm.

दास कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़।